थु रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषी समाचार ज्यू पेश बाहिनी नाति थौ नेपाल सम्बत चिन्छ सब पिको द गुलागा नवमी फोटेखुसी खुसी बालीपा त्रिशुली तिन ए जल विद्युत आयोजना या सुरुङ दुनिये थाना चोपी निम कर्मचारी मिग जीवित उद्धार जुगुदो नेपाली सेना प्रवक्ता राजाराम बस्नेत कथ उद्धार चोपी मध्ये सञ्जय शाह व किपुया कबीर महर्जन ख सेना नेतृत्व वङ्गु पुचल चिनुलिपा वेकअप द उद्धार यागु ख नापा उद्धार जुयादीमा सञ्जय शाह या उसाया सामान्य दु लिपा उद्धार जुयादीमा कबीर महर्जने अवस्था सिङ्गुली ए या छाउन या ब्रेन र सैनिक अस्पताल वास जुया चुङ्गुदु मिग छम सिमन अन पिकागुदु आतक खुसी बाल सिपनुगुला चिन्सोस व पिपेम थेङ्गुदु थौ सुथे तक चिन थोल्याखे सिम लिकागु व पेदो च्यासो व गुई च्याम आन तनाचङ्गु नेपाल प्रहरी धागुदु नेपाल प्रहरी कथ आतक च्यादो खुस व सुई छम या उद्धार यागुदु सिपी मध्ये चिन सोस व्यवस्थापन जुगु प्रहरी धागुदो अर्थे धागु सिथ यङ्कुगु धागुदो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह श्रीकृष्ण जन्मास्थिव्य लसत्या मिग मस्ते त नामे छगु हसना पिथना दिगुदो सामाजिक सञ्जालले मस्ते त तातया वेकल मस्त कने या ज जुगु नितना दिसे भिङ्गु भविष्य नीति थम ज्या यना चुङ्गु दैदिगु ख वेकल पटेको सि खुसी बाल आपल मस्ते त दुग्यङ्क दुखी जुगुली थतन अथे तागु नेता दिगु ख वेकल आशकल छप्प जुया सुरिचित व भिङ्गु नेपा देखे त नेजा मागु बिचाना प वेकल पङ्का दिल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल एलया लाकुली लाग्या चुङ्गु कृष्ण देगले पूजा आराधना एना भगवान् श्रीकृष्ण या दर्शन या नादिगुदु राष्ट्रपति पौडेल भगवान् श्रीकृष्ण जन्मासी नख या छोले राष्ट्र प्रमुख हसित थ जहान सविता पौडेल लिसे पूजा आराधना एना पुजारी पाखे स्वा प्रसाद ग्रहण या नादिगु ख कृष्ण देग लाग्या राष्ट्रपति पौडेल या त एल महानगरपालिका प्रमुख चिरबाबु महर्जन एल जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ऋषिदेव फुयाल प्रमुख जिल्लाधिकारी नरहरि घिमिर सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी सुप्रभा ढुङ्गेल महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठ पिन्स लस्कु सेनादिको ख राष्ट्रपति कृष्ण देग चापले एल क्षेत्र नम्बर दुई या सांसद जगदीश खरेल बागमती प्रदेशीय कार्यवाहक सभामुख अप्सरा चापागाई पूर्व मन्त्री मधुसूदन पौडेल प्रेमभक्त महर्जन प्रदेश सभासद रघुनाथ महर्जन पिङ्गु बोती दुगु ख देगले दर्शन याना प्रसाद ग्रहण लिपा राष्ट्रपति पौडेल मङ्गहित या अवलोकन याना दिगु ख भगवान् श्रीकृष्ण जन्म जुगु लुमिन्ती देदेश गुलागा अस्मी कुनु थो नख हनिगु याई एलय पाटन कृष्ण देग लिसे देन्यङ्क कृष्ण देगले मिग निश्चय भगवान् श्रीकृष्ण पूजा आराधना याना सुख शान्ति समृद्धि व पारिवारिक कल्याण कामना यही भक्त जन्पी तसक म जुगु ख हिन्दू धर्मकन्थ द्वापर युगे गुलागा अस्मी कुनु भगवान् श्रीकृष्ण जन्म जुग विश्वासे कृष्ण जन्माष्टमी नख हनिगु प्रचलन दु श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धार्मिक स्थली से नेपा या मौलिक कला संस्कृति परम्परा व सामाजिक सद्भाव यातन उलाकेना ओयाचुङ्गुदु जुजु सिद्ध नरसिंह मल्लले चिन्नेको गु शताब्दी निर्माण जुगु पाटन या कृष्ण देगले मल्लकान लिसे हे कृष्ण जन्माष्टमी कुनो राष्ट्र देश पाखे विशेष पूजा आराधना जुया व्याचुङ्गु धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा ख रातन्त्र धनीबले जुजु व राजपरिवार कृष्ण जन्माष्टमी कुनो देगर दर्शन यगु प्रचलन दुगु ख विक्रम सम्म 2065 साले गणतन्त्र पलिस्ता जुई ढङ्का राष्ट्र प्रमुख भूमिका राष्ट्रपति उगु परम्परा त निरन्तरता बिगु ज्या जुया व्याचुङ्गु ख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नाय लिसे पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वया पुचल रात सामग्री जुना खुसीबा प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट बिदुर थेङ्का दिगुदु नाय ओली नेतृत्वया पुचल खुसीबा प्रभावित क्षेत्र या स्थलगत अवलोकन यागु लिसे प्रत्येकको अवस्था उद्धार हो राहत विरोध विशेष जानकारी कयादिम पार्टी या छ्यान्चे नापा बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेत कनादिगो ख रसुवा या खुसी बाल खापा जोपी पी खुमसित ए या थिति अस्पताल वा स या काचुङ्गुदु सिसेन अस्पताल खापा जुपी हपी हे नेम मध्ये आ सुइमसित वा स जुयाचुङ्गुदु थन हपी मध्ये पी
निम दिशा जुइदुङ्गु गुदुसा छम सिगुख उकथाय राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर भर्ना जोपी निम मध्ये सुइखुम दिशा जुइठुङ्गु गुदो अस्ट्रेलिया आना चिन निम खापा जुपनिगु वास जुयाचुङदु उपी मध्ये समिस्त उच्च निगरानी कच्च ओ गुमेसित आपतकालीन कच्चे ओ वाडे तया वास याका चुङ्गु धागुदु दार्चुलाया अपी हिमाल गाउँपालिका भट्टार लागे चल वङ्गुली बस्ती जोखिमे लागुदो चलखन लाना सडक स्याङ्गु व चौलानी खुसिया त फच्चा तिना बिगुदो प्रमुख जिल्ला अधिकारी वर्तराज पौडेल चल उना चोङ्गुली खुसी या त तिना बि फैगुली वा चाका चुने त इनाप यनादिगुदो सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिसेना फोटिकुसी खुसीबा या बुख चुएबले प्रसारण याबले मानवे खया त थुइका तिनी बि त इनाप याना दिगुदु नुवाकोट व रसुवाया होल्डिङ सेन्टर ए मच्चा बुपी छेज तना चोपी छेज मरुपिनीगु बुख चुएबले वाचाके त मन्त्री तिमिसेना थते इनाप याना दिगु ख रसुवा पोटेकुसी वगु खुसी बाले लाना ए महान पालका दुनिया झिन्खुम बेपत्ता जुयाचुङ्गु सिदुगुदु वङ्गु भदौ दस गते वगु खुसी बाले लाना आतका दुनी ए महानगरपालिका दुनिया झिन्खुम बेपत्ता जुयाचुङ्गु प्रारम्भ विवरण सार्वजनिक जुगु ख विवरण कथ खुसी बाले ए महानगर या हे छमिसियागु छेन चुइकुगुदु ए महानगरपालिका थनया राष्ट्रिय सभागृह सञ्चालन हकु विपद व्यवस्थापन हेल्प डेस्क व विपद सूचना केन्द्र पाखे यागु विवरण कथा उगो तथ्य प्या वगु ख केन्द्र ओगु विवरण कथा रसुवा खट्टे खोलापाखी एक वडा छम व्यवता जुयाचुङदु वडा छ या निगु परिवार या न्याम वडा एकतिस या पेम उन्तिस वडा छम छब्बिस वडा न्याम व्यवता जुयाचुङदु केन्द्र बिउगु जानकारी कथा तेइस वडा उमा श्रेष्ठया देवघाटे चुङ्गु छका छे चुइकुगु दु पोटेकुसी वगु खुसी बाला मधुपिन त श्रद्धाञ्जली पोङ्के त सुनिग या नेवामी त पाखे व्रत शोक रोयाली याइगु जुगुदु नेवा दे दबु नाप थिति सङ संस्थते मुज्या चुना वैगु आइतबा व्रत शोक रोयाली यागु कोसुगु ख मुज्या नोना दिसे नेवा नेहलवाली से मानव अधिकारवादी नेता मल्लके सुन्दर 2072 साले त फुखा ओ बोले न सुनिग या पिस त धङ्गु ल्याखे रात सङ्कलिना ग्वाली यागु लिसे फुखा चे मधुपिनीगु नीति वृहत रूप शोक पङ्कुको ख ध्या दिसे आ भोटिकुसी वगु खुसी बाला मुटुपिन्त श्रद्धाञ्जली पङ्के गोलिसे पीडित पिनी राहत नीति सुनिग नागरिक त सक्ल जना ज्या यागु जुई नाप खनादिल शोक र्याली आइतबार बसन्तपुर सुते 6:30 बजे झ्याकेको ख सिरुगुदु बसन्तपुर झ्याइगु र्याली हनुमान थोका मख वङ्ग जनबाह अस पोटाइटी जुया रत्नबारके शान्ति पार्टीके थिङ्का श्रद्धाञ्जली सभा हिली शान्ति पार्टीका मधुपिनी नामे स्वा खादा देछ्या गुज्या जुई व्रत शोक र्याली पोटीका त सकसित इनाप नाप यागुदो र्याली पोटी काइपिन त टुयुगु टी सर्ट पुना स्वा खादा जोना वेतन बैठक इनाप यागुदो खोप नगरपालिका छगु ज्याजो या दोथी थिति सञ्चार माध्यम या पत्रकार त हनिज्या या आगुदु नगरपालिका गोसाले जुगु ज्याजोले खोपे चुना पत्रकारिता माध्यम खोप नगरपालिका त ग्वाली यानादिपी थिति सञ्चार माध्यम या पत्रकार त हनिज्या या आगु ख नेपाल मजदुर किसान पार्टी या केन्द्र नाय नारायण मान बिजुक से रोहित प्रमुख आतिथ्य जुगु ज्याजोले सञ्चार माध्यम या खोप नगरपालिका व सञ्चार माध्यम खोप नगरपालिका निगु सफु तयार या त ग्वाली एना दिपी चोमी पत्रकार सञ्चारकर्मी ते त हना पौलिसे थिति दोहलप्पा देछासे हनेज्या या आगु ख ज्याजोले नोना दिसे नेपाल मजदुर किसान पार्टी या नायब बिजुक छे खोपे जर्मन सरकार विकास निर्माण ज्या यासा उली दुगङ्क ज्या मजुगु ख कनादिल लिसे वेक्ल थनिया भाषा कला संस्कृति संस्कार लिङ्का ते त स्थानीय हे सर्जक सतर्क सक्रिय जुई मागु खे ध्वातिका दिल तेह्रथुमिया जिल्ला या सदरमुका म्यागलुङ बजारे मेमुको दिने सुयाथो इले छगु विशेष कथा चल पल खने दयाचुङ्गु सिधुगुदु परम्परागत बाजा धुन व लाखे आकृति खनिदेव म्यागलुङ बजारे विस्क या सांस्कृतिक वातावरण तोपु या तगुदु नेवा समुदाय मौलिक संस्कृति लाखे जात्रा महोत्सव
न्युजागुली म्याग्लुङ बजार जात्रमय जुया चुङ्गु ख नेवादे धबु म्याग्लुङ गोसाले चिगु संस्कृति चिगु मसिका धैगु मु नारालिसे न्यागु लाखे जात्रा न्याइपुकेगु छगु पर्व जग मखुसे पुस्तौँ पुस्तातक पुस्तारन जुया वयाचुङ स्थानीय मौलिक संस्कृति परम्परा व समुदाय मसिकाय छगु जीवन्त अभिव्यक्ति न ख बाजौँ या ताले हुलिगु लाखे प्याखन सतके केवल न्याइपुगु लकस जग बोलिङकीगु मखु से पुलाङ्गु संस्कृता त थौ या नु पुस्तालिसे स्वागु ज्यान याना चोङ्गु सिदुगुदु क्यानेडियन नेवागुठी दे दस थे थुसिन ए या पुनि या लस तया समयपछि ज्याजो याइगु जुगुदु क्यानाडा या चुना चोपी नेवा ते त सङ्गठन क्यानेडियन नेवागुठी स्वी नि छ द क्यङ्गु व ए या नख या लसता समयपछि ज्याझो या तिङ्गु ख क्यानाडा नेवा कला संस्कृति परम्परा प्रवर्धन लिसे सम्वर्धने नचिला चुङ्गु गुथी थोहे वैगु सेप्टेम्बर 26 तारिक हुनु उगु ज्याझो या तिङ्गु ख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हापया सरकार र युक्रेनिया त ब्युगु अमेरिकी ग्वाली या दा युरोपेली पुच दे पाखिली त फनेगु अथैदिगुदु ट्रम्प त इलनसिं युक्रेनिया त पश्चिमी ग्वालिया अपोलम बो युरोपी पुच तेसन बिमा धका तया उया सुङ्गु ख सामाजिक सञ्जाल तुत सोसले राष्ट्रपति ट्रम्प थगु निने सार्वजनिक यानादिगु ख थोय जोले रुसन हापा बहनी जग यानाचुङ्गु आक्रमण आ युक्रेनिया राजधानी केबे हिने हे यानाचुङ्गुदु तुकी राजधानी केब बासिपिन्त निपेगो तक हे यानाचुनिमागु अवस्था बोलङ्गु धादु धागुदु थौ देन्यङ्क खसु खनिदै हिमाली लागा छु थासे नन्याना वा नाप चपु गाई अथे पहाडी लागा आपलो थासे नन्याना वा नाप चपु कुहाँ वैगु धागुदु देन्यङ्क या छगुनीको थासे मध्येको वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागु ख सोनिगले मिग नि खुगु फुटी नेगु डिग्री सेल्सियस या क्वाज लुगु ख थौ नि खुगु निसे नि च्यागु डिग्री टक्क क्वाज लुइगु धुकमा यागुदु नेपाल भाषा बुख कोचाल सुभा

चु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिरी राङ्नी दाढेनमुला गैन्दिरा थिङ रसुवाला भोटे कोशी घान्देरी खाबा भाल चुई घिक रारी तिनी नुवाकोटला बेत्रावती बजारला आनन्द र श्रेष्ठला धिम ग्याम डुचुई ब्ली दिङला चन्द्रिका श्रेष्ठला उद्धार लाबामुला श्रेष्ठदा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालला इन्सपेक्टर सुमन बिकला टोलीसे उद्धार लाबा हिन्ला उद्धार लाबा लिछा श्रेष्ठदा हेलिकप्टर ग्याम त्रिशुलीला नेपाली सेनाला मैथली ब्यारेकवासी दाते मान लाबारी याम्बु बाबामुला चुराङलासिन तिनिन तोचा त्रिशुली गिक जलविद्युत आयोजना ला अडिट ब्ली टनेल ग्याम मेन्दो गिक चिनिया मिनिदा उद्धार लाबामुला नेपाली सेना थेन कोरियाला डिजास्टर टोली से तिनी दिनेरी उद्धार लाबा हिन्ला बिसी नेपाली सेना से पाङबामुला आयोजनाला स्यान्दो सुरुङ थेन थुम्का डेरी दाते नुन थेरी गे लाबा मिनिका दे फस्तीबा संकारी नेपाली सेना सुरक्षा निकाय थेन विशेषज्ञ टोली से डिक्सी माइबा गे लाबानमुला भोटेकोसी ताबाना त्रिशुली गान्धीरी खाबा भालसे नुवाकोटला गोर्ब्ली ग्लाला नाम्सा ग्रेन जोखिम्री मराङबामुला त्रिशुली गान्धी ब्योङबा ग्लानोन पोसी रेमरेम खाबा भालसे सा थाबन निबा लिछा होजा नाम्सा कादे जोखिम ताबा हिन्ला जोङला नुपक्यार मुबा तारकेश्वर गाउँपालिका भिला दर्शन टार थुम्ला नाम्सा लाना प्रभावित ताबा मुला बिसी नुवाकोटला सिडिओ शम्भु प्रसाद रेग्मिसे सुङबामुला सिडिओ रेङ्बिसे सुङबा अनुसार ग्यार्जा गिग बिमा लाना दिम मुबा दर्शन टार छ्याम गाम्ला नाम्सा कादेनोन जोखिम रिमराङबा मुला भालसे विदुर नगरपालिका गिक बान्द्रे ओडा नम्बर भिला बस पार्क बेलकोट गढी नगरपालिका निस छ बिसेला नाम्सा थेन सार्वजनिक संरचना ऋण छेती ताबा मुला बिसी नुवाकोट जोङ प्रशासन से पाङबा मुला गान्धीसे थाबन मुबासे नाम्सा योनान खाली लासी थेनी कादेदा सुरक्षित ग्लारी भोरबारी पालिका दा पाङबा मुला बिसी जोङ विपद व्यवस्थापन समितिला थुतबोन थेन सिडिओ रेग्मिसे सुङबा मुला बेलकोट गढी निस्ला छ बिसे रि नाम्साला छ्याम गल्छी रसुवा गढी सडक योजनाला गल्छी देवीघाट सल घ्यालाम नुन छेती शोभा मुला बिसी जोङ प्रशासन गेजाङसे पाङबा मुला भोटे कोशी गान्धीरी खाबा भाल ग्याम माबा मिनी ङोसेबारी नेपाल प्रहरी से डिएनए झाँस लाबा नमुना किनबारी नुवाकोट ऋण रूपा केन्द्र सेङबामुला चुङाछा नमुना पिनबारी पीडित थेत्माला सदस्य रसुवा थेन नुवाकोट ग्याम याम्बु खादोबा मुबा भाल प्रभावित थुम्ला मिनी दा पीडित कादेदा सहज तागाई बिसी विदुरी नमुना रूपा गे लाबान मुला बिसी नेपाल प्रहरी अस्पताल ला प्रहरी नायब महानिरीक्षक डाक्टर दामोदर पौडेल से सुङबा मुला डाक्टर पौडेल से सुङबा अनुसार डिएनए जाँच लाबारी आपा आमा ज्योज्यो आले नाना आङा थेन जा जामेरी खाल्ला मुसाइनोन मेन्दो गिक्ला नमुना किन्बा लाबा मुला भोटे कोशी भाल लिछा स्याप्पा तोङ गिक ग्यार्जा सोम्से मेन्दो ब्लिचुई भ्लिरी तोङ गिक्से सोम्चुई मिनिला सिबा लुइरो सुरक्षित लासी सारी क्यासी व्यवस्थापन लाबामुला स्याप्पा सिबा लुइरोदा ङोसेबारी डिएनए नमुना किन्बा राङबा तोबा प्रक्रिया ढिक्ना लासी दाते नोन ग्यार्जा निसे मेन्दो निचुई नि जामेकोला ग्यार्जा सोम्से मेन्दो गाचुई गा जा कोला थेन ग्यार्जा ब्लिसे मेन्दो ङाचुई सोम ङोसेबारी आखाम्बा सिबा लुइरो व्यवस्थापन लाबा मुला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला सिबा लुइरो ङोसेबारी सिबा कादेला तोङगिक ग्यार्जा निसे कुचुई थेन ङेङ्गोर कादेला तोङगिक्से चुई निला डिएनए नमुना किन्बा मुला बिसी मियो प्रहरी सुङबोन अभि नारायण काफले से सुङबा मुला ङोसेबा तोङगिक ग्यार्जा निसे मेन्दो निचुईला सिबा लुइरोला विवरण नेपाल प्रहरीला वेबसाइट रि थान्बा मुला सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसे गे लाबान लामा भोटेकोशी भाल्डी सिबा सशस्त्र प्रहरीला थेत्मादा लाख निचुई घा राहत पिनबा ताबा मुला सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलला चोहबाङरी चिबा परामर्श समितिला चिसाङसे सिबा कर्मचारीसे कल्याण कोच ग्याम छ्याई किन्सी फाबरी बाँकी ताबा मुकुन टाङ्गा मिन्हा लाबा थेन थेला दिम थेमेदा गाम्ला लोपखाङरी कक्षा चुई
झोना ब्रिबा डोबारी टाङ्गा आकिन्न लासी पिन्बा निर्णय लबा मुलाबिसी सशस्त्र प्रहरीला रो सुङबोन शैलेन्द्र थापासे सुङबा मुला भालग्याम शिवा सशस्त्र प्रहरीला ढाण्डी स्मारक नोन शोभा ताबा मुला नुवाकोटला विदुर नगरपालिकाला देवीघाटरी मुबा तादी स्योङरी डुचुई मिटर रेङ्बा एग्रो ब्रिज थान्बा गे ती बामुला निबा भदौ चुइला कुनु रसुवाला भोटे कोसी घान्दिरी खाबा भाल्से तादी स्योङरी मुबा चाम भ्योङबा लिचा होजा थुम्री मोटर सेङबारी खाम्बा आरे फुप्पा सडक ग्यालाम थेन चामसे लामा मिनी कादे ब्राबारी थेन सामान कादे बाबा भोरबा लाबारी समस्या ताबा लिचा नेपाली सेनासे चाम थान्बा गे लाबन मुला रसुवा जोङला भाल प्रभावित दा नोर रोपिन्बा लेबा निबामुला नेपाल सरकारला काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोषेन काइब्लोन राहत कोश्री धाते अर्ब चुई गिक करोड गा लाख घाचुई डु तोङ निचुई नि ग्यार्जा कुसे सिका निस चुई घिक टाङ्गा झम्मा ताबा मुला बिसी काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङला घेजाङ से पाङबा मुला सरकार से चुङाछा होजा कोश्री जम्मा ताबा अर्ब घिक भाल प्रभावित थुम्री निकासा लाची झिन्बा मुला काइब्लोन बालेन्द्र साहसे मि चुङबा ग्लुबा आलाबा युल सोबारी सङ्घ प्रदेश थिएन स्थानीय तह ग्याम मोकोन सरोकार थान्बा कादे ढिक्सी गे लातोला बिसी सुङबा मुला मि चुङबा ग्लुबा विरुद्धला निचुई छा ह्युलबाङ धिन्छेन लाप्सरी मानसाङ सानगिर सुङबान काइब्लोन साहसे मि चुङबा ग्लुबा ह्युलबान कलङ्क हिन्ला सुङबान चु समस्या जाम्बुलिङरिन लेबान निवासे काबारी योनान मोकोन डिक्सी बङ लातोला बिसी सुङबा मुला प्रविधिको सही प्रयोग र सजगता मानव बेचबिखन रहित राष्ट्र निर्माणमा एकबद्धता विवाह ताम्दा किन्सी तिनी जाम्बुलिङरी चु दिन्छेन धाङबान मुला काइब्लोन साहसे सुङबा अनुसार मि चुङबा ग्लुबा काबा एन 2064 दा गाछा बोरबारी बङ तागाई बिसी संशोधन लाबा विधेयक संसदरी धर्ता लाबा मुला जोङ प्रशासन गेजाङ कञ्चनपुर से तिनी कागुर गिक छिसी महाकाली गान्धी ङामरी चिबा मिनिदा सतर्कतासी चिबारी मोइजेन लाबा मुला दार्चुलाला अपि हिमाल गाउँपालिका गिक भण्डार ला चौलानी गान्धीरी तोर ग्याम खाबा ढुइसे गान्धी गाङसाल कासी ढुई निबान मुबासे गान्धी नोन काबारी खाम्बा बिबान ताबारी खाम्बा जोखिम ग्याम सोबारी जोङ प्रशासन गेजाङसे मोइजेन लाबा हिन्ला काइब्लोन बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र संघला निचुई गिक छ ग्रेन ह्वाल्डी पो किनबारी अमेरिका निस्युबा ताबा मुला काइब्लोन शाह नेपाली मुल्मी थेत्माला गोबाङ लाबान राष्ट्र संघला ह्वाल्डी निस्युबा ताबा मुला बिसी सूचना थिएन सञ्चार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिनासे सुङबा मुला अमेरिकाला न्युयोर्कला राष्ट्र संघला गेजाङरी तबा ह्वाल्डी नेपालला गोबाङ लाबान काइब्लोन से लेङमो थान्स्युबा गेखोर मुला काइब्लोन छ्याम रोङसा ब्लोन शिशिर खनाल नोन कोर्बा टोलिरी पोकिन्स्युबा ताबा मुला हिमालयन राइटर्स सोसाइटी हेटोडासे भोटे कोसिरी खाबा भालसे रसुवा नुवाकोट धादिङ राङबा घ्लारी सिबा मिनी कादेला भ्ला साङ्गे ह्युल्डी धोगाई बिबान तिनी हेटोडारी शान्ति र्याली तेबा मुला गेन्दुनला गाछा वाल्लाप्सरी हेटोडा उपमहानगरपालिका भ्लिला भुवनेश्वर पशुपति लाखाङ ग्याम तेबा र्याली होजान ग्लारी लानन ग्ला कोर्बान होजान ग्लारी दोषी वाल सेङबा मुबा कास्किला माछा पुछ्रे गाउँपालिका गिक साँदल डी सोभान लाबा सुपर सेती जलविद्युत आयोजना ला ग्यालाम ख्वाबा धुइरी ढुइसे नाङसी गम्भीर घाइते ताबा मेन्दो नि गे लाबा मिनिला मन लमन लमा सिबा मुला धनकुटाला पाक्रीबास नगरपालिका ब्रेदिम तसी आयोजनारी गेलाबा निचुई डु दिङला आयुष राई थेन खोटाङला कोपिलास गढी गाउँपालिका घिक्ला निचुई निस दिङला किसान राई सिबा मुला जोङ प्रहरी गेजाङ कास्कीला सूचना अधिकारी थिएन प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र कुमार पासवान से सुङबा अनुसार मेन्दो निनोन मणिपाल शिक्षण अस्पताल डी मन लमन लमा सिबा हिन्ला
पृथ्वी राजमार्गला धादिङ गजुरी गाउँपालिका नि पर्वा ब्रा परेवा भिर सडक ग्यालाम सोभारी तिनी ङ्यासे डु ङ्यामा धोना दा होजा ग्यालाम बन्धन लाभामुला चु भदौ चुइला कुनु भोटेकोसी छ्याम त्रिशुली घान्दिरी खाबा भाल्से परेवा भिरला पृथ्वी राजमार्ग छेती ताबा लिछा होजा ग्यालम ग्याम पाल्से पाल्से लासी मोटर सेङबान खाबा मुबा भाल्से लामा धादिङला बेनी घाट रोराङ गाउँपालिका निस कृष्ण भिरली ग्यालम बन्धन ताबा मुला बिसामा बेनी घाट चुइ ङवाङ स्योङथेन थाक्रे निला कमेरे भिरली पाल्से पाल्से लासी मोटर पुइबा घे लाभान मुला चुराङ लासिन बागमती प्रदेश सरकारसे हेटोडा याम्बु खाबा निबारी सहज सोबारी भीम फेदी कोगटे इपा सिस्नेरी सडक घ्यालाम्दा वैकल्पिक घ्यालाम्ला रूपरी सेङबारी माइबान मुला पृथ्वी राजमार्गला कृष्ण भिरली सडक ग्यालाम भास्तीबा लिचा याम्बु उपत्यका रि ग्यास आयाङबा समस्या दा थुम्ना लाबारी छोङबोन कादेसे बङ लाबान मुला छोङबोन कादेला नेपाल आयल निगमसे उपत्यका फिर्क्याप बोटलिङ लासी सिलिन्डर बाबारी पाङबा लिचा छोङबोन कादेसे होजान अनुसार लाबारी माइबा मुला साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसे कान सोबा ग्यास दा समस्या दा थुम्ना लाबारी निजी ग्यास कम्पनी थेन डिक्सी राङला सिलिन्डरला ग्यास भरदिबारी तिबा मुला स्यान्स्यु बान मुबा सान्ग्यु जिन्जी फ्याफुल्ला।

रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मानव बेच बिखन तथा ओसार पसार मुक्त समाज निर्माणक लेल संघ प्रदेश आ स्थानीय तह सहित सब सरकार भेल निकाय बीच सहकार आवश्यक रहल बतौलनि अछि। मानव बेच बिखन विरुद्धक विषम राष्ट्र दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश जारी करैत प्रधानमंत्री शाह मानव बेच बिखन मानव सभ्यता कलंकक रूप में रहल चर्चा करैत ई संगठित अपराधक रूप में विश्वभरि फैल रहला कारणे एहि के रोकबाक लेल सरकार भेल निकाय बीच सहकार आ समन्वय आवश्यक पड़बाक बात उल्लेख कयलनि। प्रविधिक सही प्रयोग आ सजगता मानव बेच बिखन रहित राष्ट्र निर्माण में ऐक्यबद्धता नामक नारक संग आई दिवस मनाओल जा रहा है। प्रधानमंत्री शाह प्रविधिक विकासक संगे मानव बेच बिखन तथा आयात निर्यातक प्रवृत्ति प्रकृति स्वरूप आ गंतव्य में सेहो परिवर्तन आबि रहा बतौलनि। प्रधानमंत्री शाहक अनुसार मानव बेच बिखन तथा ओसार पसार नियंत्रण ऐन 2064 के पड़ला पर प्रोटोकॉल अनुकूल होबय वाला संशोधन का विधेयक संसद में दर्ता कयल गेल अछि। एहिसँ मानव बेच बिखन तथा आयात निर्यात से पीड़ित के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मानव अधिकार संरक्षण के लेल राष्ट्र बीच सहयोग आ समन्वय बढ़ायब सहज होबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। विद्यमान कानूनी तथा संस्थागत संयंत्र के संघीय संरचना अनुरूप बनेबाक क्रम में मानव बेच बिखन विरुद्धक नीति जारी कऽ कार्यान्वयन में आनल गेल प्रधानमंत्री शाह जानकारी देलनि। ओ मानव बेच बिखन विरुद्धक अभियान में संघीय सरकारक अतिरिक्त प्रदेश सरकार स्थानीयतः राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था विकास साझेदार अन्य सरकार भेल निकायक सहकार अपरिहार्य रहल बतौलनि। हमरा सभक साझा पहल संयुक्त प्रयास सँ मात्र मानव बेच बिखन मुक्त समाज बनेबाक लेल संभव होयत। प्रधानमंत्री शाह संदेश में उल्लेख कयलनि। ओ मानव बेच बिखन तथा आयात आ निर्यात विरुद्ध नेपाल सरकारक अभियान में निरंतर सहयोग समन्वय सहकार करबाक सब प्रति धन्यवाद व्यक्त करैत सरकारक प्रतिबद्धता में साथ सहयोग ऐक्यबद्धताक लेल आग्रह कयलनि। रसुआक भोटोकोसी बाढ़ि सँ बेपत्ता अंदाजी 60 वर्षीय चंडिका श्रेष्ठक उद्धार भेल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालक केंद्रीय प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नेत्र बहादुर कार्की श्रेष्ठ के नुआकोट विदुर नगरपालिका वार्ड नंबर 10 वेत्रावती स्थित चारतल्ला घर सँ आई उद्धार कयल जानकारी देलनि। हुनका अनुसार थाल में रहल अवस्था में उद्धार कयल गेल अछि। श्रेष्ठ के उद्धार कऽ उपचारक लेल हेलीकॉप्टर मार्फत त्रिशूली लऽ गेल हुनक कथन अछि। भोटेकोसी आ त्रिशूली नदी में आयल विनाशकारी बाढ़िक कारण प्रभावित 216 मेगावाट क्षमताक मथिलो त्रिशूली एक जल विद्युत आयोजनाक ऑडिट 4 टनल सँ एगोटे चीनिया नागरिक के जीवित उद्धार कयल गेल अछि। नेपाली सेना कोरियाक डिजास्टर टोली आई दिन के 1:20 पर आयोजनाक ऑडिट 4 टनल सँ चीनिया नागरिकक उद्धार कयल नेपाली सेना जनौलक अछि। आयोजनाक अन्य सुरुंग तथा छत सब में एखनो कामदार सब फसल आशंका में नेपाली सेना सुरक्षा निकाय विदेशी विशेषज्ञ टोली संयुक्त रूप में खोजी तथा उद्धार कार्य के तीव्रता दऽ रहल अछि। भोटेकोसी नदी में आयल बाढ़ में पड़ि कऽ हरा रहल व्यक्तिक पहचानक लेल नेपाल प्रहरी डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA परीक्षणक नमूना लेबाक लेल नुआकोट में संकलन केंद्र संचालन में आनलक अछि। एहिसँ पहिने नमूना देबाक लेल पीड़ित परिवारक सदस्य रसुआ नुआकोट सँ काठमांडू जेबाक वार्ता रहला पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रक पीड़ित परिवार के सहज बनेबाक लेल विदुर में नमूना संकलन केंद्र संचालन में आनल गेल। नेपाल प्रहरी अस्पतालक प्रहरी नायब महानिरीक्षक डॉक्टर दामोदर पौड़ेल जानकारी देलनि। हुनका अनुसार DNA परीक्षणक लेल माता पिता भाय बहिन आ दीदी तथा बेटी बेटा कोनो एगोटे संग नमूना संकलन कयल गेल अछि। भेटल गेल लाश के DNA सँ तुलना करबाक लेल सबसँ निकट के खून सँ संबंधित व्यक्ति के नमूना आ अधिक उपयोगी भेलाक कारणे विशेष कऽ माता पिता बेटा आ बेटी सँ नमूना लेबाक लेल ओ आग्रह कयलनि। ई संभव नहि भेला पर अन्य आफंत सँ खून लऽ कऽ आफंत के पहचान कयल जा सकबाक डॉक्टर पौड़ेल जानकारी देलनि। रसुआ स्थित भोटेकोसी नदी में भादव 10 गते आयल विनाशकारी बाढ़ि में पड़ि कऽ मुनिहार मध्य हाल धरि 1344 गोटे के लाश भेटल अछि। अहिना 4898 गोटे एखनो संपर्क विहीन अछि। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल आई भिनसर सार्वजनिक कयल पछिला विवरण अनुसार भेटल मध्य 52 बालक 33 बालिका 269 महिला 489 पुरुष तथा 501 लाश
चिन्हल नहि जा सकबाक अवस्थामे भेटल नेपाल प्रहरीक केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी न्याय महानिरीक्षक अभिनारायण काफले जानकारी देलनि। हुनका अनुसार एखनो 4,898 गोटे सम्पर्कविहीन अछि। सम्पर्कविहीन मध्य स्वदेशी पुरुष 2,448, महिला 482, फोनमे टिपा रहल 1,350 तथा विदेशी नागरिक दिस पुरुष 274 आ महिला 344 गोटे रहल प्रहरी न्याय महानिरीक्षक काफले जानकारी देलनि। भेटल मध्य 1,030 गोटेके लाश सुरक्षित रूपमे जमीनमे गाड़िकऽ व्यवस्थापन कयल गेल अछि। बाँकी लाशके पहचान तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल अछि। बाढ़ पश्चात एखन धरि 8,631 गोटेके घायलके उद्धार कयल गेल अछि। उद्धार कयल गेल मध्य 3,655 गोटेके सुरक्षित रूपमे होल्डिंग सेन्टरमे राखल गेल प्रहरी न्याय महानिरीक्षक काफले बतौलनि। एहिना मृतक 1,260 गोटे तथा मृतक के आफंत 972 गोटे मिलाकर कुल 2,232 गोटे के डीएनए नमूना संकलन कयल गेल अछि। बेपताक पहचान तथा लाशक शनाख्त के लेल डीएनए नमूना संकलन के प्राथमिकताक संग आगू बढ़ाओल गेल प्रहरी जनौलक अछि। गोटे कोसी बाढ़ सँ भारी मानवीय क्षति भेल अछि। बाढ़ मे पड़ि बेपता भेनिहारक खोजी उद्धार तथा लाश व्यवस्थापनक लेल नेपाल प्रहरी सहित सुरक्षा निकाय संबंधित विभिन्न सरकारी निकाय निरंतर परिचालित भऽ रहल अछि। भोटे कोसी नदी में आयल भीषण बाढ़ सँ प्रभावित नागरिकक उद्धार राहत तथा पुनः स्थापनाक लेल बांके सँ प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में 24,37,274 टका सहयोग जमा भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय बांके सँ प्राप्त विवरण अनुसार विभिन्न 21 संघ संस्था विद्यालय व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिगत रूप में ई रकम संकलन का सहयोग कयल गेल अछि। बांकेक प्रमुख जिलाधिकारी दिल कुमार तामंग विपद में पड़ल नागरिकक उद्धार तथा राहत के लेल बांके सँ विभिन्न क्षेत्रक व्यक्ति तथा संघ संस्था सहयोग कऽ रहल बतौलनि। हुनका अनुसार जिला सँ सबसँ अधिक नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघ 6,01,000 प्रदान कयलक अछि। एहिना बागलुंग कालिका मंदिर द्वारा 11,00,000 टका हस्तांतरण, बागलुंगक कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समिति भोटे कोसी नदी में आयल बाढ़ सँ प्रभावित नागरिक सभक राहत तथा पुनर्स्थापनाक लेल 11,11,111 टका आर्थिक सहयोग कयलक अछि। समितिक पदाधिकारी सब सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले के ई रकम बराबर के चेक हस्तांतरण कयलनि। चेक ग्रहण करैत अर्थमंत्री डॉक्टर वागले संकट के घड़ी में बागलुंग कालिका गुठी देखाओल ई मानवीय संवेदनशीलता आ सहयोगक सराहना कयलनि। एहिना ई रकम बाढ़ पीड़ितक लेल आवश्यकता अनुसार आधार पर पारदर्शी ढंग सँ राहत आ पुनरुत्थान में उपयोग कयल जेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। बीपी प्रतिष्ठान द्वारा 37,00,000 टका सहयोग, बीपी कोयराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान द्वारा बाढ़ पीड़ित के लेल 37,00,000 टका आ 2,000 सहयोग प्रदान कयलक अछि। भोटे कोसी नदी में आयल बाढ़ सँ प्रभावित नारी के खोज, उद्धार, स्वास्थ्य उपचार आ पुनर्स्थापना में सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्य सँ ई रकम प्रदान कयल प्रतिष्ठानक आर्थिक प्रशासन प्रमुख मोहन कुमार राय जानकारी देलनि। प्रतिष्ठानक पदाधिकारी, शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा पूर्व कर्मचारी सब एक दिन बराबर के पारिश्रमिक भत्ता तथा पेंशन सँ सहयोग स्वरूप प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में रकम जमा कयल ओ जानकारी देलनि। इच्छाकामना गाँव पालिका के 4 गोटे नागरिक बेपत्ता भेल जनबैत बाढ़ प्रभावित के खोज, उद्धार तथा राहत के लेल 11,00,000 टका सहयोग उपलब्ध करबाक निर्णय भेल। गाँव पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकराज खत्री जानकारी देलनि। कालका नगर पालिका 35,00,000 टका, मौरी नगर पालिका 43,98,206 टका, खैरहनी नगर पालिका 15,00,000 टका सहयोग उपलब्ध करबाक संगे राप्ती नगर पालिका बाढ़ पश्चात नगर के एम्बुलेंस, कृषि एम्बुलेंस सहित परिचालन कऽ रहल नगर प्रमुख शमशेर लामा जानकारी देलनि। नेपाल अंग्रेज के पराजय कयल खुशियाली में आई पाल्पाक तानसेन में ऐतिहासिक भगवती यात्रा रथ यात्रा निकालल जेबाक बताओल गेल अछि। एहिठाम हरेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीक प्रात भिने भगवतीक रथयात्रा निकाल जेबाक चलन रहि आयल। एहि भगवती गुठी संचालक समितिक अध्यक्ष अशोक महर्जन जानकारी देलनि। ओहि अनुसार आइ 207 भगवतीक रथ निकालऽ लागल अछि। सशस्त्र प्रहरी महोतरीक सोनमा गाँव पालिका वार्ड नंबर 6 मगर थाना सँ लगभग 2,40,00,000 टका बराबर के एप्पल एयर वर्ड्स ई कंपनी निर्माण कयल बिना तार के एयरफोन बरामद कयलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनने छलहुँ, मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटेकोशी बाढ़ के 11वें दिन आज दो लोगों को बचाया गया सकुशल। अब तक 1,335 शव बरामद। बाढ़ से रसुआ में 41 किलोमीटर सड़क और 8 जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त। त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण नुआकोट की 4 बस्तियां उच्च जोखिम में। और यमनी सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच झड़प में कम 60 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। भोटेकोशी बाढ़ में संपर्क विहीन दो लोगों को आज 11वें दिन सकुशल बचाया गया है। नुआकोट के बिदुर नगर पालिका 10 बेतरावती से 64 वर्षीय चंद्रिका श्रेष्ठ को सशस्त्र पुलिस ने घर की चौथी मंजिल से सकुशल बचाया है। बाढ़ प्रभावित बस्ती के घरों में मौजूद सामान हटाने और सहयोग के लिए पहुंची बचाव टीम ने घर के अंदर से महिला की आवाज सुनी। इसके बाद सशस्त्र पुलिस निरीक्षक सुमन बीका के नेतृत्व वाली टीम ने कीचड़ में फंसी श्रेष्ठ का सकुशल उद्धार किया। श्रेष्ठ को आगे के उपचार के लिए काठमांडू स्थित वीरेंद्र सैनिक अस्पताल ले जाया गया है। इसी तरह आज ही ऊपरी त्रिशूली एक जलविद्युत परियोजना से एक चीनी नागरिक को भी जीवित बचाया गया है। नेपाली सेना और दक्षिण कोरिया की डिजास्टर टीम ने आज दोपहर परियोजना की एडिट 4 सुरंग से चीनी नागरिक का उद्धार किया। नेपाली सेना के अनुसार उद्धार किए गए व्यक्ति को उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य जांच के लिए नुआकोट के त्रिशूली स्थित मैथिली बैरक ले जाया गया है। इसी तरह कल त्रिशूली 3A की सुरंग से दो लोगों को जीवित बचाया गया था। रसुआ के भोटेकोशी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक 1,335 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। ये जानकारी नेपाल पुलिस ने दी। पुलिस के अनुसार रसुआ में 160, नुआकोट में 193, धादिंग में 67, चितवन में 362, गोरखा में 74, तनहू में 38, नवलपरासी पूर्व में 222 और नवलपरासी पश्चिम में 219 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह कुल 1,335 शव मिले हैं। बरामद शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर अब तक 1,030 शवों का व्यवस्थापन किया गया है। पुलिस के अनुसार शवों को सुरक्षित रूप से जमीन के नीचे रखा गया है। इसी तरह मृतकों के 1,260 और उनके परिजनों के 1,012 समेत कुल 2,272 डीएनए नमूने पहचान के लिए एकत्र किए गए हैं। पहचान नहीं हो पाए 1,292 शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पुलिस के अनुसार बाढ़ से प्रभावित अब तक 13,098 लोगों का उद्धार किया जा चुका है, जबकि लापता 4,887 लोगों की तलाश जारी है। रसुआ के भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता जुटाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री देवी प्रकोप राहत कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष में अब तक 11,05,56,26,971 रुपए की राशि मौजूद है। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। सरकार इससे पहले इन कोषों में जमा 1 अरब रुपए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए जारी कर चुकी है। कार्यालय के अनुसार 9 वाणिज्य बैंकों में 8,06,25,15,518 रुपए तथा हिमालयन बैंक और लक्ष्मी सनराइज बैंक में मौजूद डॉलर खातों में अतिरिक्त 1,98,37,695 अमेरिकी डॉलर जमा हुए हैं। भोटेकोशी से त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के बाद नुआकोट के 4 बस्तियां उच्च जोखिम में आ गई हैं। नदी के लगातार कटाव से तारकेश्वर 4 के दर्शन टार्क क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जहां 100 से अधिक परिवार रहते हैं। बिदुर के बांद्रे और बस पार्क तथा बेलकोट गढ़ी के 26 में भी बाढ़ से नुकसान हुआ है। प्रशासन ने नदी कटाव वाले इलाकों के बस्तियों को तत्काल खाली कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आग्रह किया है। बाढ़ से सड़क समेत कई सार्वजनिक और भौतिक संरचनाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद लापता लोगों की पहचान के लिए नेपाल पुलिस ने नुआकोट के बिदुर में डीएनए नमूना संकलन केंद्र शुरू किया है। इससे पहले पीड़ित परिवारों को नमूना देने के लिए काठमांडू जाने की बाध्यता खत्म हो गई है। पुलिस के अनुसार नुआकोट में लापता लोगों की तलाश के लिए 2,564 आवेदन मिले हैं। अब तक 192 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से केवल 18 की पहचान हो सकी है। शवों की पहचान के लिए लापता लोगों के परिवार के नजदीकी रक्त संबंधियों, खासकर माता पिता या बच्चों से डीएनए नमूने लिए जा रहे हैं। भोटेकोशी बाढ़ में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के कर्मचारियों के परिवारों को 25 लाख रुपए की राहत दी जाएगी। सशस्त्र पुलिस के अनुसार मृतक कर्मचारियों के कल्याण कोष से लिए गए बकाया ऋण को भी माफ किया जाएगा और उनके बच्चों को कक्षा 10 तक नेपाल APF स्कूल में पढ़ाई के लिए शुल्क में भी छूट दी जाएगी। बाढ़ में लापता 13 सशस्त्र पुलिस कर्मियों के परिवारों को भी आवश्यक राहत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं बाढ़ से बचने में सफल 5 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बाढ़ में मृत अवकाश प्राप्त सशस्त्र पुलिस कर्मी के परिवार को 1 लाख, घर से वंचित होने पर 1 लाख तथा आंशिक रूप से भौतिक क्षति झेलने वाले और घायलों को 50,000 रुपए तक तत्काल राहत दी जाएगी। सशस्त्र पुलिस ने प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उधार कोष में महानिरीक्षक से लेकर जवान तक की ओर से 15,50,00,000 रुपए जमा करने का भी निर्णय किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। कास्की के माछापुच्छे गांवपालिका एक सादल में निर्माणाधीन सुपर सिटी जलविद्युत परियोजना के एक्सेस रोड की खुदाई के दौरान आज सुबह करीब 11 बजे भूस्खलन गिरने से गंभीर रूप से घायल दो मजदूरों की उपचार के दौरान मौत हो गई है। मृतकों की पहचान धनकुटा के पाखी बास नगर पालिका 8 निवासी और परियोजना में कार्यरत 26 वर्षीय आयुष राय तथा खोटांग के कोपिलास गढ़ी गांव पालिका 1 निवासी 27 वर्षीय किसान राय के रूप में हुई है। जिला पुलिस कार्यालय कास्की के डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान ने इस बात की जानकारी दी। घटना में घायल इलाम निवासी 32 वर्षीय भक्त बहादुर मगर का मणिपार शिक्षण अस्पताल में उपचार जारी है। भोटेकोशी बाढ़ से रसुआ जिले में निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा सार्वजनिक किए गए प्रारंभिक विवरण के अनुसार बाढ़ से 28 सरकारी एवं सार्वजनिक भवन, 8 सामुदायिक तथा 3 निजी विद्यालय, 14 बैंक एवं वित्तीय संस्था, 1 पेट्रोल पंप और करीब 1500 निजी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी के अनुसार बाढ़ में जिले की 41 किलोमीटर सड़क, 6 पक्के पुल, 8 बेलीब्रिज और 10 झोलुंगे पुल बह गए हैं। इसी तरह भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों तथा लांगटांग खोला पर निर्मित 8 जलविद्युत परियोजनाएं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसी बीच अब तक बाढ़ के कारण रसुआ के 1,365 नागरिक, अन्य जिलों के 1,160 नागरिक और 264 पर्यटक लापता हैं। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी ने बताया कि बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के 26 कर्मचारी, 79 सरकारी कर्मचारी, 13 सशस्त्र पुलिसकर्मी, 28 नेपाल पुलिसकर्मी और 27 नेपाली सेना के जवान भी लापता हैं। बाजरा में बीरे खोला झरने में भीषण बाढ़ आने से 23 परिवार विस्थापित हो गए हैं। शुक्रवार रात से हुई लगातार बारिश के बाद बीरे खोला में अचानक तेज बाढ़ आई। बताया गया है कि ऊपरी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण नदी का बहाव रुक रुक कर तालाब बन गया था और उसके टूटने के बाद बाढ़ आ गई। बाढ़ से कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है, लेकिन 41 परिवार प्रभावित हुए हैं और 18 परिवार अब भी जोखिम में हैं। विस्थापित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से एक मछली तालाब, 2 पानी की घटियां और बीरे खोला झरने के टिकट काउंटर को नुकसान पहुंचा है। वहीं धान की फसल वो बह जाने से खेत बंजर हो गए हैं। हुमला के जिला मुख्यालय सीमकोट में बिजली सेवा अनिश्चितकाल के लिए बाधित हो गई है, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के हेल्दुम वितरण केंद्र के पावर हाउस में खराबी के कारण 16 भाद्र से बिजली आपूर्ति बंद है। पावर हाउस के यूनिट 9 के कंट्रोल सिस्टम में समस्या आने के बाद ये स्थिति बनी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यमन में सरकार समर्थित सेना और ईरानी समर्थित हुती विद्रोहियों के बीच दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुई भीषण झड़पों में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मृतकों में सैनिक, हुती लड़ाके और आम नागरिक भी शामिल हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार 26 सरकारी सैनिक और 31 हुती लड़ाके मारे गए हैं। वहीं ताइज शहर में एक मिसाइल हमले में बस से यात्रा कर रहे 6 नागरिकों की भी मौत हुई है और 7 अन्य घायल हुए हैं। झड़पें मुख्य रूप से ताइज और लाल सागर के तटवर्ती इलाकों में हुई हैं। हुती विद्रोही ताइज को अल मोखा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क तथा लाल सागर के प्रवेश द्वार बाब अलमंदब जलडमरू मध्य के आसपास रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले गुरुवार से शुरू हुई लड़ाई में 120 से अधिक लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटे कोशी बाढ़ के 11वें दिन आज दो लोगों को बचाया गया सकुशल। अब तक 1,335 शव बरामद। बाढ़ से रसुआ के 41 किलोमीटर सड़क और 8 जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त। त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण नुआकोट की 4 बस्तियां उच्च जोखिम में। और यमनी सेना और हुथी विद्रोहियों के बीच झड़प में कम से कम 60 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
2: फोर जी LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
3: अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज, गतिशील मानव जीवन, कर्मशील सारा संसारका नेपाल र नेपाली मन,
4: दूर सुदूर क्षितिजका नेपाली अनुभव शब्द चित्रमा कोर्दै स्वदेशको सम्झना र परदेशको अनुभव सुन्ने सुनाउने एउटा चौतारी कार्यक्रम घर देश परदेश। कार्यक्रम घर देश परदेशमा स्वागत छ। म प्रस्तुता हेमन्त उप्रेती। विश्वव्यापीकरणसँगै यातायात र सूचना प्रविधिको विकासले अझ साँगुरो हुँदै गरेको आजको संसारमा रोजगार, स्वरोजगार, वृत्ति विकास, शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयन, तिनको प्रयोग उपयोग र सुविधामय जीवनको आकाङ्क्षामा मानिस संसारभर फैलिँदो छ। नेपालीहरू मात्र यसमा अपवाद छैनन्। कर्मक्षेत्रमा जहाँ जहाँ रहे पनि स्वदेश र जन्मभूमिप्रति सदा कृतज्ञ रहने नेपाली मनहरूका स्वदेश विदेशका जीवन अनुभवहरू खोतल्ने एउटा प्रयास हो कार्यक्रम घर देश परदेश। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक शनिबार राति 10 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम प्रसारित हुन्छ। साथै रेडियो नेपाल online.com र रेडियो नेपाल मोबाइल एपमा पनि यो कार्यक्रम संसारभर सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ राम लामा अविनाशी। काठमाडौँ बानेश्वर निवासी लामा करिब 20 वर्ष अघिदेखि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहनुभएको छ। लामा व्यावसायिक, समाजसेवी र साहित्यकार, गीतकार व्यक्तित्वका रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा कमर्स पढ्दै गर्दा नै व्यापारिक वातावरण पाएर व्यापारतिर लाग्नुभएका लामा अमेरिका पुगेपछि चाहिँ साहित्यतिर कलम चलाउने वातावरण पाएको बताउनुहुन्छ। पिल्सिएको मन, सुगन्धित माटो, स्मृतिका बिम्बहरू उहाँका प्रकाशित कृतिहरू हुन् भने दर्जनौं गीत र भजन उहाँका लोकप्रिय छन्। व्यावसायिक वा संस्थागत उद्देश्यले अनेक देशहरू पुग्दा नेपालीहरू भेट्दा र परदेशीहरू देख्दाका साहित्यिक भावनाहरू उहाँका नियात्रा र कविताहरूमा लिपिबद्ध भएको पाउन सकिन्छ। नेपाली मनमुटुको अभिव्यक्ति पाइने उहाँको कर्मशीलताबाट लस एन्जल्समा मन्दिर स्थापना गर्ने प्रसङ्गमा होस् वा देश विदेशमा पुरस्कार स्थापना गर्ने प्रयोजनमा होस् उहाँको उल्लेखनीय योगदान रहेको पाउन सकिन्छ। साहित्य भूगोल झैँ रेखाङ्कित हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुहुने लामा सामाजिक सांस्कृतिक अभियन्ताका रूपमा डाक्टर APJ अब्दुल कलाम अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सन् 2023 सम्मानित हुनुहुन्छ। नेपाल अमेरिका एकता समाज, श्री पशुपतिनाथ बुद्ध फाउन्डेसन, बुद्धिस्ट सोसाइटी क्यालिफोर्निया लगायत अनेकौं संस्थाका सल्लाहकार रहिसक्नुभएका लामा श्री पशुपति बुद्ध मन्दिर लस एन्जल्स, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज लगायतका थुप्रै संस्थाहरूको ट्रस्टी मेम्बर हुनुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, बुद्धिस्ट सोसाइटी जापान लगायतका थुप्रै संस्थामा उहाँ आजीवन सदस्य समेत रहनुभएको छ। प्रस्तुत गर्छौँ स्वदेश विदेशका अनेकौँ व्यावसायिक समाजसेवी संस्थामा संलग्न भइकन नेपाली मनमुटुका आवाजहरू आफ्ना कलमबाट पोख्न मन पराउनुहुने अमेरिका क्यालिफोर्नियामा रहनुहुने राम लामा अविनाशीसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी। एकैछिन एउटा गीतबाट अघि बढौँ, त्यसबीच कुराकानी जोड्छौँ।

0: Entertainment. Log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: रेडियो नेपाल, नया नेपाल को समावेशी आवाज, राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्र को संचार।